0: सिद्धिनेश्वर मंदिर में दर्शन कर आने भक्तजन में हार्दिक अनुरोध।
1: विभिन्न धर्मावलम्बी को साझा आस्था को धरोहर विश्व विख्यात श्री श्री श्री भीमेश्वर भीमसेन भीम नारायण भीम भैरव भगवती महाकाली भगवान बुद्ध किरातेश्वर महादेव महारुद्र भीम राणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आफ्नो विधि अनुसार पूजा पाठ गर्दा तपसिल का विषय में ध्यान दी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न गराउन हुन सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

0: ha! Quick, quick, quick! Ah! Oi! Viu, Lera? Da hora da tijão!
1: Aumento! Aumento!
0: Ah! Oi! Ah! Quick, quick, quick! Ah! Oi! Ah! Oi! Ah! Quick, quick, quick!
2: पुरी देखी हो तुझे कसी पाई चोरी खेल नाचुस कै है ना खेल गरे को साथे हो भने को चोरी खेल नाचुस कै मन के सानी सानी हे ना काली नानी की ना हाँ क्यों झपझर गर्भा को छैन।

परसोटो सिद्ने मंता फोटो तीनों टीम लाई दीना लाई नूना मिठो भरतो की पलता पे वर्ष को तीनों टीम लाई दीना लाई तीनिया फिवना के गरम ता धाना तुमरो मान प्यादलीना माया को हंसे मन परे को

三国三撇几个三国几个几几个几来苏麦来门口的几根土哈马上来了那土छोड दिना मा जंगला सुर्ती न लवबाव को खुट स्वारू